गुण दान भगतन का बरतन विरला पावे कोई। गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज उस परमात्मा दे सिमरन दियां बरकतां अज दे हुक्मनामे दे विच बख्शिश कर रहे। पातशाह कहिंदे ने कि हे परमात्मा दे प्यारे हो, वह परमात्मा अविनाशी है, ना विनाश होने वाला है, तो जेड़ा हिरदा उस मालक नूं याद करेगा, उस परमात्मा दी बाणी दा सिमरन करेगा। सिमरत सब मल खोई, उहदे मन नूं जिहड़ी विकारां रूपी मैल लगी हुई है ना, वह दूर हो जाएगी। इस मन की मैल ने ही इंसान नूं परमात्मा तो दूर किया हुआ है। क्यों? पवित्र मन गुरु नूं प्यारा लगता है, तो मन पवित्र हुंदा भी गुरु दे चरणां दे विच ही है। जिमें कपड़ा कपड़े नूं साफ करन लई साबण दी लोड़ पैंदी है, गुरु नानक देव पातशाह महाराज आप जी साहब जी कहिंदे ने कि मन नूं जिहड़ी मन दी मैल है ना, ये परमात्मा दे नाम दे नाल धो हुंदी है। दे साबुण लई है उह धोए, अरिये मत पापा कै संग ओ धोपै ना वह कै। पातशाह कहिंदे ने वेखी किते पाप ना कमा दे, कीते हुए पाप तेरे मन नूं मैला कर देणगे ते उतो

वाह गुरु तेरा सब सदका सो कहो टल गुर सेविय एहन सुसहज सुपाए दर्शन परसे है गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो वैसपत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह।

नम हे अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पाव कल कलेश तन माहि मिटाव सिमरौ दास विशंभर एकै नाम जपत अगणित अनेकै।

जाए अष्टपदी दस वस्तु लै पाछे पावे एक वस्तु कारण बिखोट गवावे एक बीना दे दस पी हिरले तो मूड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको की जय सत नमस्कार जाके मन लागा परम मीठा सर्व सुख नानक सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व सुख नानक तिन पाया अगणित साहु अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास अपनिया मान कश बहुर साहो ले अज्ञानी मंडोस करे अपनी प्रति ते आप ही होवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्ती से आगे राखे प्रभु की आज्ञा मान माथे उसते चौगण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया से रंग लावे ओह बिन सह ओह मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहे होते हैं अंध अंध।

कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छति अमृत काय तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिस को सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसै त्याय सदा मनि अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाट पटंबर हंडावे तिसै त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख सेज सोई जे मन आठ पहर ताका जस गावी जै। जे प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पथ सेती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन दहिले बुलावो तिस राम सनेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन सा सा सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपूखण पहरी जय मन ति सिमरत।

परम गत पावे जी प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग अवर कतला गो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताको जा जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्योरा जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया जित जित लाभ हो तित लगे हरनाथ नानक इन कै कछु ना हाथ सलोक आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साजना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सु ज्ञान साध के संग बुझय प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की मम्मा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सम्मानी साध के संग अगोचर मिलै साध के संग सदा पर फुलै साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग ना कतहु तावै साध संग अस्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही होताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनियाई साध के संग ना कबहू तावै साध के संग सदा सुख पावै साध संग वस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग बसे थान ऊंचाय साधु कै संग महल पहुँचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुडम निसतारे साधु कै संग सो धन पावै जिस धनते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधु कै संग शोभा सुरदेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पेटत होत निहाल साध के संग कलू खत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरे साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग नाम ते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे साध के संग लगे प्रभ मीठा साधु के संग कटकट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पही हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने तेता बखियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूछ ते मूची साध की शोभा साध बनियाई नानक साध प्रभ भेद न भाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवना पेखे एकस बिन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमन कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दुख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दुष्ट समान जैसे राज रंक को लागे तुल पवन ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक जो वसुदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एहो गुनाओ नानक ज्यों पाव का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मलते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तारू पर्याकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्चते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल करीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी के ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी

अनक प्रकार अष्टपदी। कई कोट है पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट ब्रह्म बान भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवत नाम त्यावे, नान करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश फरमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समगरी अपने सूर तारे, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निसतारे, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरे सबुते दूर, नानक आप अलपत रहे परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुजोनी फिरे, कई कोट बैठती खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया महचिंत, जय जय पाणा तय तय राके, नानक सब किछ प्रभु कै हाथ है, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगत निबलागी, कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिन को मिल्यो, प्रभु अविनाश, कई कोट मांगे सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन कौ होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सजा एक एकंकार, कई कोट कीने बहुपांत, प्रभ ते होए प्रभु महे समात, ताकांत न जाने कोई आपे आप, नानक प्रभ सोई, कई कोट पावरम के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर भय सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सा सा सुमारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे, सलोक कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाहीं कोई, नानक तिस बल हारण है, जल थल महियल सोई अष्टपदी, करण करावन करने जो जो दिस भावे, सोई होखन में था पुथा पणहारा, अंत नहीं किश पारा, वारा हुक्मे धार अतर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रहा समाई, प्रपावे मान गत पावे, प्रपावे पाथर तरावे, प्रपावे इनसास्ते राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतत उधारे, आप करे आपन बीचारे, दोहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै विकसै अंतर जामी, जो पावे सो कार कमावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मानक ते क्या होए आवे, जो तिस पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब किछले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत बिख्या में रचे, जे जानते आपने आप बचे, भरमे पुला दे दिस्तावे, निमख माहे चार कुंट फिरे आवे, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले, खिनमे नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवास, जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दृष्ट प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश, जियो पिंड सब जिसकी रास, काट काट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत्या बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल ना ही इस हाथ करण ग्राम, सर्व को नाथ आज्ञाकारी, बपरा जियो ज्योतिष पावे, सोई पुन थियो, कबहूँ ऊंच नीच में बसे, कबहूँ सोग हरख रंग रस हसै, कबहूँ निंद चिंद व्यवहार, कबहूँ ऊब आकाश प्याल, कबहूँ बिता ब्रह्म विचार, नानक क्या मिलावन हार, कबहूँ नृत्य करे बहु भात, कबहूँ हो सोए रहे दिन रात, कबहूँ महा क्रोध विकराल, कबहूँ सर्व की हो तरवाल, कबहूँ होए बहे बड़ राजा, कब हों पेखारी नीच का साजा, कब हू अपगीर्त में आवे, कब हू पला पला कहावे,
ज्यों प्रभु राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। कब हूँ होए पंडित करी बखियान, कब हूँ मोन तारी लावे त्यान, कब हूँ तट तीर्थ स्नान, कब हूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कब हूँ कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन पर मैं परमिया। नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ भावे तिवै नचावे, जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा अवरना कोई, कब हू साध संग इहो तपावे। उस अस्थान ते बहुर ना आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए बस राम, नान प्रभ कै सद कुरबान सलोक। सुखी वसै मसकीनियां, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारी नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अपमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जो बरवंत, सो होवत विष्टाका जंत। आपस को कर्म मंत कहावे, जन्म मरे बहुजन परमावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता होए कर गरबावे, तृण समान कछ संग न जावे, बहु लस्कर मान कुपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पस मंत, किसे न बदे आप हंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जा का मिटे अपमान, सो जन नानक दर गए परवान। कोट कर्म करे हों तारी, श्रम पावे सगले बिरथारी, अनक तपस्या करे हंकार, नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दर गए कहो कैसे गवे, आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे, सर्व की रीन जा का मन होए। कहो नानक ता की निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते काश होए, तब इस कौ सुख नाही कोय, जब जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जौन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निचल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देस जाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटै, सहस खटे लख उठ तावे, तृप्त नावे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे, खब खप मरे बिना संतोक नहीं को, राजे सुपन मनोरथ ब्रथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, बडभागी किसै प्राप्त होए, करण करावण आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावण करण हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दिश तय करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किशकिनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबु कै संग बूझे, देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सदी रह समाए। आप उपदेशे समझे आप, आपे रचया सबके साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका हो करने हाँ।